0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपकी मेजबान हैं खदीजा शाह और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। खदीजा, दीवान खाना ऐसा गोशा जहाँ कुछ सुनने और कुछ कहने के लिए हम मिलकर बैठे।
1: जी बिल्कुल वसीमा, यही तो है हमारी महफिल दीवान खाना। इसमें शिरकत के लिए सामईन पहले खत लिखते थे, वही खत जो निस्फ मुलाकात कहलाता है।
0: अरे बहन, अब आ गया ईमेल का जमाना। खत के बजाय ईमेल निस्फ मुलाकात बन गई। नया दौर, नए तकाजे।
1: बिल्कुल, इन तकाजों को पूरा करने के लिए आज की इस महफिल में ईमेल के जरिए पैगाम, खत, तस्वीर या वीडियो भेजने का तरीका बताते हैं। सामईन, हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर आएं और फिर नीचे स्क्रॉल करके दीवान खाना की तस्वीर तलाश करें।
0: अच्छा अच्छा, वो जो हमारी सब मेजबानों वाली तस्वीर है उस पर क्लिक करना है क्या?
1: जी बिल्कुल, दुरुस्त कहा आपने। अब नए खुलने वाले सफ़े पर दीवान खाना की थंबनेल यानी पहली तस्वीर के छोटे वर्जन की बाएं जानिब पैगामात यहाँ भेजें का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। अब आप हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं वाले सफ़े पर पहुंच जाएंगे।
0: अरे खदीजा, कोई आसान तरीका नहीं इस सफ़े पे आने का?
1: बिल्कुल है भाई, सर्च इंजन पर उर्दू में लिखें हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, तो सर्च में NHK का ये सफ़ा आपको मिल जाएगा।
0: सामिन, यहाँ ये याद रखिए कि उर्दू रस्म अलखत में लिखना है आपने हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं, उर्दू रस्म अलखत में लिखना है। और लेकिन अगर हमारे सामने कोई उर्दू नहीं लिख सकते तो उनके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि वो हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu के ज़रिए इस पे तशरीफ लाएं। और खदीजा, अब आगे बताइए कि आगे कहाँ जाना है।
1: जी, इस पेज पर तस्वीर के नीचे दिए गई हिदायत को पढ़ने के बाद फॉर्म की तरफ बढ़ें वाले लिंक पर क्लिक करें।
0: सामिन, लिंक है फॉर्म की तरफ बढ़ें।
1: जी हाँ, अगर पहली रसाई पर रजामंदी की तस्दीक वाला पेज खुले तो पढ़कर कबूल के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ने के लिए तीर के निशान पर क्लिक करें।
0: एक और क्लिक।
1: हाँ जी, इसके बाद हो सकता है कि नोट वाला पेज खुले। ऐसी सूरत में मंदरजा बाला से मुत्तफिक को मुंतखब करके बाएं जानब वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। अब फॉर्म खुलेगा जिसमें आपसे ये मालूमात मांगी जाएगी। एक, आपका उर्फी नाम यानी निक नेम, दूसरा आपका ईमेल एड्रेस और तीसरा आपका पैगाम यानी मैसेज। पैगाम लिखने के बाद अगला सवाल ये होगा कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी साथ भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम काफ़ी है।
0: अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ मैसेज भेजना है तो मैं क्या करूँ?
1: तब नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करके तीर के निशान पर क्लिक करने से आपका पैगाम हम तक पहुंच जाएगा।
0: अच्छा खदीजा, मैंने खत लिखा है और मैं उसकी तस्वीर भेजना चाहती हूं या मुझे कोई वीडियो शेयर करनी है, तो उसका तरीका बताएं ना।
1: जी, ऐसी सूरत में हाँ वाला ऑप्शन मुंतखब करें और आगे वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। नए सफ़े पर आप अपनी फाइल का उन्वान यानी टाइटल लिखें, उसके बाद बाएं जानिब वाले तीर पर क्लिक करें। अब अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीले रंग के सबमिट बटन पर क्लिक करें।
0: मुझे पता है सामिन, जब ऐसा करेंगे तो सक्सेस योर फाइल हैज बीन सबमिटेड का मैसेज आएगा, उसमें आपने नीचे कंफर्म का ऑप्शन मुंतखब करके कंप्लीट पर क्लिक करना है ना खदीजा?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बस यही करना है। इस क्लिक के बाद आपकी फाइल, आपका पैगाम या खत फौरन हम तक पहुँच जाएगा। हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे और अगर मुनासिब हुआ तो दीवान खाने के प्रोग्राम में शामिल भी कर देंगे।
0: और हम उन पैगामात के मुंतजिर रहेंगे जिन्हें भेजना अब खुल जा सिमसिम की तरह सिर्फ एक क्लिक से ही मुमकिन है।
1: वसीमा, इतनी बार क्लिक क्लिक कर रही हैं आप, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मेरे आसपास कोई प्यारी सी बतख फिर रही है।
0: अरे खदीजा, मुझे बतख कह डाला सिर्फ एक क्लिक पे।
1: भाई हाँ, कहा तो सही लेकिन प्यारी भी साथ कहा। अच्छा, क्लिक की कमालात तो हैरान कर देते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT और मसनूई जहानत यानी AI के इस दौर में आप पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने के बारे में मालूमात ले सकते हैं।
0: सामिन, अभी खदीजा ने कहा IT, कहा AI, तो इसी मौजू पर जापान में लगी एक नुमाइश में शिरकत की दास्तान भी सुनानी है हमने आपको।
1: अरे वाह, तो समझ ना आइए, क्यों ना हम भी सुने। कब और कहाँ लगी ये नुमाइश?
0: अस्सलाम वालेकुम सामिन। इस साल जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जायका की एयानत से पाकिस्तान की 12 आईटी कंपनियां जापान में एक नुमाइश के लिए तशरीफ़ लाई हैं, और यह नुमाइश जो हो रही है टोक्यो के बिग साइट में, एक पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तानी बूथ के सामने जापानी बोलते हुए यहां आने वाले लोगों को कुछ वजाहत कर रहे हैं, तो आइए उनकी बातें सुनते हैं।
2: मेरा नाम यासर अयाज है, मैं पाकिस्तान में नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चेयरपर्सन हूँ और पाकिस्तान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट में प्रोफेसर भी हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के शोबे में। इसके अलावा मेरी स्पिन ऑफ कंपनी भी है और उसको लेकर आज हम जापान में यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि हम एआई के मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो जापान में इंट्रोड्यूस करवाएं।
0: तो आप तो बड़ी अच्छी तवक्कुआत लेके आए हैं जापान में, तो क्या आपको लगता है आपके बूथ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और किस किस्म की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं वो लोग?
2: हमें बहुत सारी अच्छी लीड्स मिली हैं और जापानी लोगों का, क्योंकि एशिया है और पाकिस्तान का भी, लोगों के जो ट्रेंड्स हैं वो जापानी लोगों के ट्रेंड से काफ़ी मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। और इसमें हमें सबसे पहले जो कल बड़ी हमें एक लीड मिली वो तो थी हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में बुद्धिस्ट की बहुत हेरिटेज है और बुद्धिस्ट की बहुत सारी हेरिटेज साइट्स को रिक्रिएट करते हैं। मसलन ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान में जो टेक्सिला के एरिए में धर्मराजिका स्टूपा है, हमारे पास जूलियान की मोनास्ट्री है, बहुत सारे जो लॉस्ट हेरिटेज है उसको हम रिक्रिएट करते हैं ग्राफिक्स में। तो इनको एग्जाम्पल ग्राफिक्स में रिक्रिएट करके जापानीज हेरिटेज को भी और पाकिस्तान की ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज को हम जापान के म्यूजियम्स में शोकेस कर सकते हैं। इस पर हमारी जापान के कुछ म्यूजियम से मीटिंग भी हुई है। इसके अलावा हम जापान में बहुत सारा काम कर रहे हैं यहाँ की जुनतेंदो यूनिवर्सिटी के साथ भी और मेडिकल प्रोडक्ट्स में, तो ये एक एग्जाम्पल है जो हम इनको दिखाया है कि हमने पहले इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं और मजीद प्रोजेक्ट हम साइन अप कर सकते हैं मेडिकल लोगों के लिए। तो इसमें फ्रेल्टी असेसमेंट है कि जो बुज़ुर्ग लोग जापान में काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, तो उनकी फ़िज़िकल फ्रेल्टी को मैयर करना कि उनके कौन से मसल्स कमज़ोर हैं, कौन से मसल ताकतवर हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि उनको किस किस्म की फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। हमारे पास एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस है कि हम लोकल एआई डिप्लॉय करके भी कन्फिगर करते हैं, जो कि एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी है।
0: बहुत शुक्रिया, अच्छी वजाहत की इन्होंने। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में आईटी के कौन से शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हो रही है? चार पांच शोबों का तो आपने जिक्र कर दिया, पर इनमें से सबसे जो ग्रोथ वाला है, जो सबसे ज़्यादा फ़रोग पाने वाला, सबसे ज़्यादा तरक्की वाला, वो कौन सा शोबा है?
2: आई थिंक इसमें तो कोई डाउट इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ पाने वाला शोबा एआई का है इस वक्त आईटी के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और कई सर्वेज ने ये इंडिकेट किया है कि दुनिया में 72% तक अब कंपनियां अपने मेन प्रोडक्ट को एआई में बदल रही हैं, जो उनके मेन प्रोडक्ट जिस भी डायरेक्शन में है उनको वो एआई के प्रोडक्ट में बदलना चाहती हैं, जिस तरह जिसमें कई कंपनियों के नाम है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आईओटी, आईओटी अराउंड 46% पे जाता है जिसमें लोग जा रहे हैं। फिर उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है और नंबर ऑफ अदर जो एआई के इसमें आते हैं।